0: रेडियो सुनो 91.7 एफएम
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
2: Hi, this is Sushin Shyam.
1: You're listening to
2: Radio Suno 91.7.